0: नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है, जरूर है, जरूर है।
1: रंग केसर शूरा